0: Oh, great stuff. This is the last ad break, so enjoy it.
1: Sunny Govan, 103.5 FM, broadcasting from the heart of Govan.
2: We provide employability support, radio skills training, and workshops.
3: Local music, news, and events.
4: Find your voice through community radio.
5: Sunny G, 103.5 FM, and online.
6: Created by volunteers, made in Govan.
7: सनी जी पॉजिटिव डेस्टिनेशंस प्रोजेक्ट आपके लिए रोजगार या ट्रेनिंग के मौके हासिल करने में मदद फराहम करता है हम आपको सीवीज कवर लेटर्स जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखने में मदद कर सकते हैं इंटरव्यू के एडवाइस देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस पीवीजी या पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने में और कॉलेज या मजीद तालीम की कोर्सेज के लिए अप्लाई करने में भी मदद कर सकते हैं مزید معلومات کے لیے sunnyg.org پر وزٹ کریں یا 01414453741 پر کال کریں مفت ملاقات کی بکنگ کے لیے javed@sunnyg.org پر ای میل کریں سنی جی ریڈیو آپ کو پوزیٹیو ڈیسٹینیشنز تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرتا ہے
0: Welcome to the last, 15 minutes, I think, of the show. 12 minutes, maybe something like that. You listen to Totally Wired with me, San Fran, and Sunny Govan Radio 103.5 FM.